नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रुणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।

0: ओम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
5: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two Prime Ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
4: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Election Commission of India, ECI, has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress, AITC, regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. We have a report.
6: The Election Commission said in a statement that it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritobroto Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to submit their responses by 5:30 p.m. on Monday. The development comes amid a dispute within the Trinamool Congress over the party's organizational structure and the authority to act on its behalf before the Election Commission. Such disputes are governed by the Election Symbols, Reservation and Allotment Order, under which the Commission examines rival claims, supporting documents and submissions from the contending factions before taking a decision where necessary. The ECI has not expressed any view on the merits of the rival claims and has sought written responses from both factions before proceeding further in the matter. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
4: Iran's Supreme Leader Mujtaba Khamenei will not attend the funeral of his father, former Supreme Leader Ali Khamenei, due to security concerns. According to the current leader's representative in India, Ayatollah Hakim Ilahi, threats and surveillance risks made it unsafe for the leader to appear in public. Early on Wednesday, Iran's Foreign Minister Sayyed Abbas Araghchi issued a sharp warning to the United States. In a social media post, Araghchi urged President Donald Trump to restrain its close ally Israel from threatening Iran after Israeli Defense Minister Israel Katz said that Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei was marked for death. He said any threat against Iran's leadership would receive a strong response. Iran is scheduled to hold funeral ceremonies for former Supreme Leader Ali Khamenei from July 4th to July 9th in Iran and Iraq. Governor of Bihar, Lieutenant General retired Syed Atta Hasnain and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran today to attend the funeral ceremony of late Supreme Leader of Iran Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Minister of External Affairs said the high-level representation in the ceremony underscores the importance of civilizational ties, including people-to-people connection between the two countries, providing a robust foundation to political and economic engagements. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the two-day orientation program for newly elected members of the West Bengal Legislative Assembly in Kolkata today. The program aims to familiarize newly elected members with various aspects

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई, 8:40 और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर FM रेनबो। 3 जुलाई 2026 फ्राइडे का दिन, सो लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड गुड मॉर्निंग। तो कार्यक्रम होगा मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो चलिए, जैसा मुंबई का मिजाज है कुछ वैसी ही शुरुआत करते हैं।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ हैं और बरसात की जो चर्चा चल रही है व्हाट्सएप के ज़रिए, लोग बता रहे हैं कि रविंद्र मुंबई में किस तरह से बरसात अपना रंग दिखा रही है। बरसात लेट आई लेकिन और बहुत ही अच्छी तरह से मुंबई को पानी से सरोबर कर दिया। बहुत ही खूबसूरत गीत था मोरा नादान बालमा। जी हाँ, हमेशा से यही शिकायत रही है कि बालमा जो होता है वो नादान होता है और उसे दिल की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन क्या करें, सदियों से ये किस्सा चला आ रहा है। एनीवे, इन तीन गानों की एक खास वजह थी क्योंकि आज हमारे हिंदी सिनेमा के बहुत ही कमाल के अभिनेता, शानदार जो स्टार रहे हैं, राजकुमार साहब, जिन्हें जानी के नाम से भी जाना गया, आज उनकी पुण्यतिथि है। 3 जुलाई 1996 को मुंबई में उनका निधन हो गया था और इन गानों के ज़रिए हम उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम था कुलभूषण पंडित और अपने खास अंदाज की वजह से उन्हें हमेशा पसंद किया गया, जाना गया। एक बहुत ही क्लासिक एक्टर थे, स्टार थे, जो पर्दे पर आते थे तो छा जाते थे। तो चलिए, उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हीं की फिल्म दिल एक मंदिर का बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, लता जी की आवाज़।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, कौन आया 9:05 और 11 सेकंड और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम मस्त मुंबई, और मैं आपके साथ आपका आरजे रविन। आज क्रिकेट की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती का भी हैप्पी बर्थडे है। आपने इनको मैदान में देखा, ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को किस तरह से आउट कर देते हैं, क्लीन बोल्ड कर दिया करते थे, और इनका नाम है हरभजन सिंह। 3 जुलाई 1980 को जालंधर में इनका जन्म हुआ था। 1998 से लेकर 2016 तक इन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बहुत ही खूबसूरती के साथ खेली और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। गीता बसरा फिल्म अभिनेत्री से इन्होंने शादी की। तो आज इनके जन्मदिन की हम इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत, और आशा जी की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: आकाशवाणी FM रेनबो।
6: जी हाँ दोस्तों, 9:16 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका आरजे और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर। आज एक और हिंदी सिनेमा की बड़ी हस्ती का हैप्पी हैप्पी बर्थडे है।

और इनके बारे में बताना चाहता हूं कि ये किशोरदा के पुत्र हैं और आप इनका नाम समझ गए होंगे, जी हां, अमित कुमार साहब। संगीत इन्हें विरासत में मिला था और 1976 में एक फिल्म आई थी बालिका वधु। इसके संगीतकार थे पंचम दा यानी आर डी बर्मन साहब, और अमित कुमार ने इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाया था। और ये गाना दोस्तों इतना हिट हुआ कि इस गाने ने इन्हें हिंदुस्तान के लोगों का स्टार सिंगर बना दिया था। बहुत ही खूबसूरत गाना था, फिल्म का नाम है बालिका वधू। तो चलिए ये गाना आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब हमें बहुत बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर से क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं हर वक्त हर पल रेनबो के साथ। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, 9:28 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई, और अब हमारा जो अगला स्लॉट इसमें होता है मैटनी शो का, उसका समय हो चुका है। और मैं कुछ आपको हिंट्स दूंगा और आपको बताना होगा व्हाट्सएप के ज़रिए कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, 1963 में एक तामिल फिल्म आई थी। जी हाँ, तामिल तेलुगु में इस फिल्म को बनाया गया था। डायरेक्टर थे अधुरथी सुब्बाराव और ये फिल्म बहुत हिट हुई थी। और 1967 में उन्होंने इस फिल्म को फिर हिंदी में बनाया। कलाकार थे सुनील दत्त और नूतन जी। हिंदी में ये फिल्म सुपरहिट हुई और 1967 की जो 5 सुपरहिट फिल्में थी उनमें से एक साबित हुई। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, गानों ने कमाल कर दिया। और इस फिल्म का एक गाना मैं आपको अभी अभी सुनवा भी चुका हूँ। तो व्हाट्सएप के ज़रिए बताएं कि हम मैटनी शो में आज किस हिंदी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। सुनते रहिए FM रेनबो, और अगला गीत एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये कौन सी फिल्म है और इसका नाम क्या है, तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने सही जवाब दिए। इस फिल्म का नाम है मिलन, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, और इन लिसनर्स के नाम मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। भालचंद्र फाटक, आर एन सोनी जयपुर से, दीपा पालकर जी माहिम से, और प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे मानखुर्द से, शुभदा जी और दीप्ति चेंबूर से, अंजू अंधेरी ईस्ट से, और इन्होंने नाम नहीं लिखा है लेकिन इनका जवाब सही है, पंकज माहौड़ अमरावती से, महेश बोरा राजस्थान से, फिरोज सिंगनपुरिया जी ग्रांट रोड से, विजेंद्र घाटोल अकोला से, और लास्ट बट नॉट लीस्ट तनुजा शर्मा अंधेरी से, और लाली झा अजमेर से। आप सभी के जवाब एकदम सही हैं। आज हम इस स्लॉट में यानी मैटनी शो में फिल्म मिलन की बात कर रहे हैं। तो अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत, और इस गीत के ज़रिए मैं अपनी शुभकामनाएं आप सभी को भेज रहा हूं कि आप सबकी उम्र लंबी हो जाए।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, लव यू ऑल। और कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका आरजे रविंद्र चौहान बात कर रहे हैं मिलन फिल्म की। इस फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि दत्त साहब ने इसमें नायक का जो रोल किया था और उस रोल के लिए उन्होंने बाकायदा नाव चलाना सीखा था, क्योंकि इसमें उन्होंने एक नाविक का रोल किया था और इस फिल्म से पहले उन्हें ना ही तैरना आता था और ना ही नाव चलानी आती थी। फिल्म का बजट लगभग 80 लाख के आसपास था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। और एक और ख़ास किस्सा इस फिल्म का दोस्तों, कि नूतन जी इस रोल को करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि ये एक लव स्टोरी थी और नूतन जी को लग रहा था कि उनकी उम्र फिल्म का जो किरदार है, राधिका का किरदार है, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दत्त साहब ने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने उन्हें फोर्स किया कि ये रोल तो आपको करना ही पड़ेगा, हम आपसे ही करवाना चाहते हैं। और इस रोल के लिए नूतन जी को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला था। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो और इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाता हूँ। लता जी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत है।

0: Rani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 10:40 हो चुके हैं. आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताका एची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है. इसमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा की. दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य को आपराधिक आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने के आह्वान का समर्थन किया. श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू की गई है. पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे. श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहां पर हर साल आते हैं. ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित किया है. ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी. पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत

ये टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में अभी पांचवें स्थान पर है। अंत में मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार तेज बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस। सुनते रहिए FM रेनबो।

वेलकम बैक मुंबई। 10:03 और कुछ सेकंड्स हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम नमस्ते भारत का, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान, आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर। तो चलिए एक बहुत ही प्यारे से गीत से आगाज करते हैं, लता जी की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गौर से सुनिएगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
4: कॉस्मॉस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
3: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
4: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वेलकम बैक मुंबई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे की सुबह हम इस स्लॉट में एक गांव के बारे में बात करते हैं, और गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से गांव की मैं चर्चा करने वाला हूं, और आपसे एक हमेशा की तरह, जैसी कि मेरी आदत है, आपसे एक सवाल भी पूछना है और व्हाट्सएप के ज़रिए आपको उसका जवाब देना होगा। तो दोस्तों, आपने इंदौर का नाम तो सभी ने सुना है। इंदौर के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है। जी हाँ, उसे क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा भी कई बार दिया जा चुका है, यानी वहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और अगर आप कभी इंदौर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये शहर कितना क्लीन है। और वहाँ के हमारे एक बहुत ही रेगुलर प्यारे से लिसनर हैं अजय साखरे, जो इस वक्त भी हमारा शो सुन रहे हैं और अक्सर हमें मैसेजेस वगैरह भी करते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2003 में एशिया का जो सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था, वो गांव कौन सा था। जी हाँ, वो गांव हमारे देश भारत का था, और ये काम किया था

डिस्कवर इंडिया ने। जी हाँ, इस गांव को भगवान का अपना बगीचा भी कहा जाता है और इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ यानी क्लीनेस्ट विलेज भी कहा गया है। तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप जल्दी से जल्दी बताएं कि ये कौन सा गांव है और हमारे देश के किस राज्य में है। काफ़ी हिंट मैंने आपको दे दिया है और गूगल बाबा भी आपकी कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर कर देंगे। चलिए चलते हैं उसी गांव में। कहाँ चल दिए रफ़ी साहब की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भारत के किस गांव को डिस्कवर इंडिया ने क्लीनेस्ट विलेज का यानी सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया था, घोषित किया था। तो हमारे जिन लिसनर्स का सही जवाब है उनके नाम मैं लेना चाहूँगा। प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे मानखुर्द से, भालचंद्र फाटक जी और दीपाली शिरोडकर, शुभ लक्ष्मी मस्तकार, मनीषा फणसे, पंकज माहौड़, फिरोज सिंगनपुरिया जी, राकेश माथुर पुणे से, महेश बोरा अजमेर राजस्थान से और राज लक्ष्मी बदलापुर से, अंजू अंधेरी ईस्ट से, आर एन सोनी जयपुर से, अजय साखरे इंदौर से, दीपा पालकर जी माहिम से, शुभदा जी और दीप्ति चेंबूर से। आप सभी के जवाब सही हैं।

0: और अंधेरी से तनुजय शर्मा जी का जवाब बिल्कुल सही है। इस गांव का नाम है, थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, मौली नोंग। इसके कई तरह के प्रोनंसिएशन हैं, लेकिन सही प्रोनंसिएशन है मौली नोंग। और ये गांव मेघालय में है और ज़िले का नाम है पूर्व खासी हिल्स। तो इसी गांव के बारे में आज हम बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, तुमको दिल दिया बहुत ही प्यारा गीत आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम नमस्ते भारत और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो बात कर रहे थे दोस्तों एक ऐसे स्वच्छ गांव की जिसे कितना खूबसूरत नाम दिया गया है। जी हाँ, इस गाँव को भगवान का अपना बगीचा, भगवान का अपना बगीचा भी कहा जाता है। इस बात से पता चलता है कि ये गांव अपने आप में कितना खास है, और इसका नाम है मौली नोंग। ये गांव मेघालय के जिले में है और इस जिले का नाम है पूर्वी खासी हिल्स।

दोस्तों, इस गांव में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यहां पर आपको हर घर के बाहर बांस का बना हुआ डस्टबिन दिखाई देगा और इस गांव को बसाया है खासी जनजाति ने। और यहां पर जो भी वेस्टेज होता है, कचरा होता है, उसे धरती के अंदर एक खड्डे में डालकर दबा दिया जाता है और एक खास तरह से उसकी खाद बनाई जाती है। इस गांव में जो लोग रहते हैं उनका वैसे जो मेन काम है वो खेती करना है और यहां पर सुपारी की फसल पैदा की जाती है। दोस्तों, इस गांव को एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है और इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जा रही है और बहुत जल्दी सामने आने वाली है। तो सुनते रहिए FM Rainbow।

0: जी हाँ, गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, आज बात कर रहे हैं हम मेघालय के एक बहुत ही खूबसूरत गांव की, जिसे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज भी डिस्कवर इंडिया ने 2003 में डिक्लेयर किया था। दोस्तों, इस गांव की एक ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं, यानी वो अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम नहीं लगाते हैं, बल्कि वो अपने नाम के साथ यानी अपना सरनेम जो लगाते हैं वो उनकी माँ का नाम होता है। और घर परिवार में जो भी संपत्ति होती है, पैसा होता है, उसका पूरा अधिकार माँ अपनी सबसे बड़ी बेटी को देती है, और बेटी अपनी माँ की परंपरा को यानी माँ के उपनाम को, सरनेम को आगे बढ़ाती है। यानी वंश का नाम माँ के सरनेम से चलता है, तो इसलिए इस समाज को लोग मातृवंश समाज भी कहते हैं, यानी जिन्हें माँ के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूना से हमारे एक बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं राकेश माथुर जी, उन्होंने लिखा है कि रविन, जो ये मौलीनौंग गांव है, यहाँ पर संडे के दिन टूरिस्ट की जो एंट्री है उसे रोक दिया जाता है, ताकि गाँव के लोग अपनी जीवन शैली को ठीक तरह से जी सकें। तो मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से कमर्शल ब्रेक के बाद।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:51 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और लगातार व्हाट्सएप के ज़रिए आप मैसेज भेज रहे हैं कि मुंबई में कहां कहां पर कितनी बरसात हो रही है। जी हाँ, बरसात होनी भी चाहिए और बरसात नहीं होगी तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एनीवे, बात कर रहे थे मेघालय के एक सबसे स्वच्छ गांव मौली नोंग की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जनसंख्या कितनी है, आपको जानकर हैरानी होगी। 2024 की जानकारी के अनुसार यहां की जनसंख्या लगभग कितनी हो सकती है, 600 से 800 के बीच में, यानी यहां पर 1000 से भी कम लोग रहते हैं और घरों की गिनती है 100 से 130 के बीच में। सोचिए कितना छोटा सा गांव है, यानी 130 से ज़्यादा घर ही नहीं है। और बम्बई के बारे में आप क्या कहेंगे, यहाँ तो 130 से ज़्यादा घर एक सोसाइटी में ही हो जाते हैं। एनीवे, और यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर है, वो भारत की साक्षरता दर से भी ज़्यादा है, 90% से कुछ ज़्यादा है, यानी 100 में से 90 आदमी लगभग पढ़े लिखे हैं, जबकि भारत की लिटरेसी रेट है 81%। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह से भारत के सब गांव हो जाएं तो एक दिन ऐसा होगा कि तब लोग गांव से शहर नहीं आएंगे बल्कि शहरों से वापस अपने अपने गांव जाने लगेंगे। तो चलिए, आज गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा में इतना ही, और हिंदुस्तान के एक हमारे जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है उसकी मैंने आपसे चर्चा की, और कोशिश करें हम सभी अपने गांवों को ऐसा बना सकें। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला खूबसूरत गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की, बस महसूस कीजिए।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Welcome back Mumbai. आप सुन रहे हैं FM Rainbow. लीजिए सुनिए मुख्य समाचार. भारत और जापान ने भारत जापान निवेशक रणनीति और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है. आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है. इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में बहुत अधिक गहराई से जुड़े हुए हैं. दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और औषधीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग साझा करेंगे. श्री अमरनाथ की यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है. पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की इस तीर्थ यात्रा के लिए अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे हैं और वहां पर अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे. श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं. ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी. पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. यह श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में अभी 5वें स्थान पर है. अंत में मॉनसून. दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है. मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है. छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार तेज बारिश की संभावना बताई गई है. आप सुन रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस.

वेलकम बैक मुंबई। 11:03 और 16 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एफएम रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम होगा ब्रेक फ्री। लगता है कि मेरी जबान भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले रही है। एनीवे, आगाज़ करते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ से। बहुत ही खूबसूरत गीत है, जब प्यार किसी से होता है। तो चलिए किसी से तो प्यार कर लेते हैं, या जिससे प्यार है उसी प्यार को फिर से अपने दिल में महसूस कर लेते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो। और बरसात से क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको कहीं पर जाना है तो बहुत बार क्या होता है कि आप नहीं पहुंच पाते हैं, और आज हमारे साथ, आपके साथ और रेनबो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है। हमारी आरजे नमिता जी बरसात की वजह से कहीं रास्ते में रह गई हैं और जल्दी से जल्दी रेनबो के स्टूडियो पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। तो तभी तक मैं आपके साथ हूँ, आपका अपना रविन। और कभी किसी ने ज़िंदगी में आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, यानी किसी के साथ आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ ख़राब नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है और दूसरों के बीच में आपको परेशान करता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे आपने उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब किया हुआ है। तो ऐसा जब होता है तो आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? इस कार्यक्रम में इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वैसे भी इंसान जब ज़िंदगी की मुश्किलें झेलता है, ज़िंदगी की तकलीफ़ों का सामना करता है, तो वो खरा सोना बनकर सामने आता है। और जो खोटा होता है, यानी जो खोटा सिक्का होता है, वो खोटा सिक्का साबित हो जाता है, और जो सोना होता है वो कुंदन बनकर तप कर बाहर निकलता है। तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, रफ़ी साहब की आवाज़, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
4: इंटरनेट बैंकिंग,
3: मोबाइल बैंकिंग,
4: व्हाट्सएप बैंकिंग,
3: eKYC,
4: NEFT, RTGS,
3: IMPS,
4: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
3: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, 11:22 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री और चर्चा कर रहे थे कि इंसान का जो जीने का अंदाज है, जीने का स्टाइल कैसा हो सकता है ताकि उसकी लाइफ ब्रेक फ्री हो जाए। दोस्तों, आज दुनिया में हर इंसान की कोशिश होती है कि वो दूसरों से अलग दिखे, कुछ खास ढंग से दिखे, तो इसके लिए उसे अपना जीने का अंदाज बदलना होगा। लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान अलग दिखना चाहता है लेकिन वो दिखावे में डूबा रहे और वो सोचे कि मैं खुद को दूसरों से ज़्यादा बेहतर दिखा सकूं, शानदार दिखा सकूं, और इसके लिए वो दिखावा करने लगे तो बात बिगड़ जाएगी। असली ताकत होती है विचारों में, व्यवहार में और चरित्र में। वो कहते हैं ना कि चरित्र की जो बात होती है, चरित्र में जो दम होता है, वो एक इंसान को दूसरों से पूरी तरह से अलग कर देता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन जो नायक होता है, हीरो होता है, वो नया रास्ता बनाता है। वो आसान रास्तों को नहीं चुनता है। आसान रास्ते वही लोग चुनते हैं जो दूसरों के पीछे चलना चाहते हैं, जिनका अपना कोई मकसद ठीक तरह से क्लियर नहीं होता है, जो अपनी मंजिल के बारे में भी ठीक तरह से नहीं जानते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। लता जी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत है।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, 11:33 और 36 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री और मैं आपके साथ आरजे रविन, और हो सकता है कि आप नमिता को मिस कर रहे हो। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई हमारा विरोध करता है, कोई हमें पसंद नहीं करता है, तो इसमें हमारी यानी खुद की कोई भी गलती नहीं होती है, बल्कि कभी ऐसा होता है कि एक इंसान की काबिलियत की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से और सिर्फ उसके होने की वजह से कोई दूसरा परेशान होने लगता है, किसी दूसरे को असुरक्षा महसूस होने लगती है, जलन महसूस होने लगती है। तो ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि दूसरों की ईर्ष्या और जलन को इग्नोर करना सीखें, उसे महसूस ही नहीं करें। आप इस तरह से जी सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। कहना आसान है, ज्ञान देना आसान होता है, आप कहेंगे रविंद्र, लेकिन करना मुश्किल होता है। वाकई काम तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम करके इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है और अच्छी दिखाई देती है। तो इसलिए जब दूसरे आपकी वजह से असुरक्षित हो जाएं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वाकई आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है, जिसकी वजह से दूसरे इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। और आपको इस चीज़ को कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए, कि कहीं ना कहीं ये एक खुद के लिए, हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि दूसरे हमारे होने से इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो सुनते रहिए FM रेनबो। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो WhatsApp के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इसके बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं। अगला गीत, चलिए, मुंबई की बरसात अपना जलवा दिखा रही है और बरसात की वजह से नमिता भी रास्ते में अटकी हुई है, तो हम भी थोड़ा सा बरसात में भीग लेते हैं, बरसात का मज़ा ले लेते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे।

जी हाँ दोस्तों, प्रणव शिंदे मानखुर्द से लिखते हैं कि रविन, एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जी हाँ, जिंदगी को सादगी के साथ जीना और विचारों को ऊंचा रखना, यानी थिंकिंग हमेशा अपर क्लास होनी चाहिए, इसे ही जीवन का फंडा बनाना चाहिए। वो लिखते हैं कि हमारी ज़िंदगी यानी इंसान की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है उन्होंने कि नमक की तरह होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भला भाई नमक की तरह क्यों? जी हाँ, वो लिखते हैं कि नमक खाने में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। बहुत गहरी बात है, नमक खाने में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर वो ना हो तो भोजन का स्वाद चला जाता है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए कि हमारे अंदर दिखावा नहीं हो और हमारे अंदर नमक पूरा हो, और हमारी ज़िंदगी में भी उसी तरह से स्वाद रहे जैसे खाने में होता है लेकिन दिखाई कुछ भी ना दे। तो एनीवे, बहुत ही खूबसूरत मैसेज भेजा है प्रणव शिंदे ने मानखुर्द से। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है, और हम बिल्कुल आपके करीब आकर दिल लगाकर बैठ गए हैं आपके कूचे में, और अब यहाँ से हम हटेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: जी हाँ दोस्तों, जैसा कि गाना कह रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, और वाकई में मौसम बहुत ही बेईमान साबित हुआ। और हमारी साथी आरजे नमिता मुंबई के इस मौसम में यानी बरसात के इस चक्कर में फंस गई और लेट हो गई।
1: बिल्कुल। और ये जो कहा जाए ना, अभी राविन जी ने इतनी सारी बातें कही तो इंसानियत की एक मिसाल राविन जी ने भी आज पेश की है, और जिस तरह से उन्होंने हमारे सभी लिसनर्स को एंटरटेन किया है, पूरा सेगमेंट जो है वो महसूस नहीं होने दिया किसी की कमी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और नहीं नहीं नमिता, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है भाई, मुझे अपने जो लिसनर्स हैं उनसे रूबरू होने का एक घंटा और एक्स्ट्रा मिल गया, बल्कि मुझे ज्यादा मजा आया।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू। बने रहिए यहीं, आगे बढ़ते हैं म्यूजिक कैफे की ओर, हमारे साथ ही रहिएगा। और भी बेहतरीन नगमे आपका कर रहे हैं इंतजार, और मीठी मीठी बातें तो होंगी ही। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: म्यूजिकली और एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं हूँ आरजी नमिता आपके साथ और पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परम्परा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन लाखों श्रद्धालुओं के जीवन में एक अविस्मरणीय और अत्यंत शुभ अनुभव है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहाँ प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर महालक्ष्मी मंदिर के पास कंक्रीट सड़क के लोहे की सरिया बाहर निकल आने के कारण आज महज 12 मिनट में 15 से अधिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन हादसों में कई दुपहिया और चौपहिया वाहनों का नुकसान हुआ है, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मुंबई में लगातार चौथे दिन भी भारी बारिश जारी है। सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में कई स्थानों पर जल भराव शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए मुंबई महानगर पालिका की आपदा प्रबंधन व्यवस्था पूरी तरह सतर्क और तैयार है। अंधेरी सबवे के अलावा सायन, किंग सर्कल, दादर, टीटी, वडाला, विद्या विहार, अंधेरी और कुर्ला सहित कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

जी हाँ, जब धुआं, धुंध या कोहरा रहता है तो सिर्फ प्रकृति की ये अवस्थाएं नहीं होती है, बल्कि जीवन के गहरे रूपक भी होते हैं। जी हाँ, आज का म्यूजिक कैफे धुआं और कोहरे के ऊपर, धुंध के ऊपर। तीनों में एक ही समानता है, तीनों कुछ देर के लिए हमारी जो नजरें हैं उसको धुंधला देती हैं, है कि नहीं? और अभी अभी हाल ही में हम इसी एक्सपीरियंस से गुजर के आ रहे हैं, तो आपसे ज़रूर अपनी ये बात शेयर करेंगे कि आज के दिन बिल्कुल भी प्रयास ना करें कि किसी भी तरीके का रोडवेज यूज़ करें। मोस्टली कोशिश करें, अगर आप जा सकते हैं तो आप लोकल ट्रेन्स का ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ हो सकता है हमारी तरह आप भी कहीं उलझ कर रह जाएं। फिलहाल ये तो है सड़कों की हालत, लेकिन इसके अलावा भी एक परेशानी है धुंध की। धुंध, धुआं, कोहरा, जी हाँ, जिसकी वजह से गाड़ियों को विजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। लेकिन आज म्यूजिक कैफे में जिस धुएं की, जिस धुंधलाहट की हम बात करने वाले हैं, ये कुछ और ही है। ये जिंदगी की वो झुंझुलाहट या वो धुंध है जो अक्सर हमको कुछ देर के लिए शून्य में पहुंचा देती है। बस ऐसी ही बातें और ऐसे ही गाने। सावन के मौसम में ये गाने ना सुने तो क्या किया भाई। आगे बढ़ते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, ये वाला गाना पेशे खिदमत है।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
4: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
3: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
4: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: म्यूजिकली ओर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पे मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक कैफे। म्यूजिक कैफे में बात हो रही है धुंध की, रास्तों की, जो धुंध भरे होते हैं दोस्तों वो हमारी सिर्फ

0: देखने की जो क्षमता होती है उसको चुनौती देते हैं। कभी कभी जीवन में निर्णय भी ऐसे ही होते हैं। कोहरा कभी नहीं कहता कि रुक जाओ, वो कहता है संभल कर चलो। आज की तेज जिंदगी में शायद कोहरा हमें धैर्य सिखाने आता है। और जिंदगी की बात करें तो इन धुंधले रास्तों में भी एक रास्ता जो आपको मिल जाता है, इन धुंधले रास्तों में एक ऐसा मित्र भी आपको मिल जाता है जो इन धुंध से आपको निकाल कर कहीं ले जाता है। कोई ऐसा है जो इस कोहरे से, जीवन के इस धुंध से आपको निकाल के बाहर लेके आया है और उसे आज आप थैंक्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख भेजिए 8657661071। बने रहिए यहीं FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

आरजू झूठ है, कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

से जुड़े हुए, यानी अभी के जो माहौल में ये गाने जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी के उमंग का, तो लीजिए पेश है ये कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से

0: सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहां तक समुद्र की बात है, यहां सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियां समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है, है ना?
6: मामा जी, मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था। मामा जी, भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है।

0: आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
1: ये किसी खुदरे से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
0: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष?
0: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
0: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा।
0: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
3: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
3: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
3: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
3: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
3: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
3: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
4: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम

0: पट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
1: आशा है श्रोता मित्रों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
0: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: जी,
0: लेकिन आज श्रोताओं आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
1: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ दिन यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह,
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को

0: बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
2: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
3: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
3: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
5: अलख निरंजन।
6: ए साधु बाबा।
5: अब अच्छा,
6: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।

0: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहां कल वहां, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
1: क्या?
0: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
1: है?
0: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: बहुत बड़ी फौज है।
0: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
0: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
0: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
0: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। इस वक्त आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं RJ नमिता आपके साथ।

जी हाँ बिल्कुल, म्यूजिकल ईयर्स एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं और कुछ ही पलों में आप समाचार सुन सकेंगे। लेकिन आज के इस मौसम में आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि सड़कों पर धीमी गति में गाड़ी चलाएं। हालांकि तेज़ गति के लिए भीड़ ही बहुत है, लेकिन फिर भी जब भी हमें मौका मिलता है हम बहुत तेज़ गति से जो है गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत दुर्घटनाओं की जो है वो उम्मीद बढ़ गई है। तो अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ते हैं। हिट एंड हॉट का सफ़र होगा समाचारों के उस पार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पे मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ, और आज करेंगे हिट एंड हॉट में आपकी ही बात। कुछ पजल, कोई एक जो बोलेंगे कि डायलॉग ज़रूर आपको सुनवाऊंगी जिससे आपको पहचानना होगा कि ये किस मूवी का नाम है। तो अपने जो सामान्य ज्ञान है बॉलीवुड से रिलेटेड उसे फिर से एक बार खंगालने का आपको मौका मिलने वाला है। फिलहाल आपके जो गीत है पसंदीदा वो मेरे पास आ चुके हैं और वन बाय वन प्ले होने वाले हैं। सबसे पहला गाना, जी हाँ, बारिश के मौसम में बारिश के गाने फरमाइश में ना होंगे तो क्या होगा। भजिया और चाय जो है ना वो तो हम घर के किचन से मांगते ही रहते हैं, पर ये गाना सचमुच बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो पसंद कर रहे हैं। फिर भी जिन्होंने खास रूप से पसंद किया है, ओमकार जी ने हमें पांडुरपुर से लिखा है, इस गाने की फरमाइश की है। तो सबसे पहला गाना पेश है, खिदमत है, बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ। आगे करूंगी बात और आपसे जरूर पूछूंगी सवाल।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। मैं हूँ आरजे नमिता। हिट एंड हॉट का ये सफ़र जारी हो चुका है और ये पहला नगमा जो है आपने ओमकार जी की पसंद पर सुना है, और इसके बाद जो है मुलुंड से अशोक जी की पसंद का गाना आएगा, सुनील गायकवाड़ जी की पसंद का, विजेंद्र जी की पसंद का। जी हाँ, गाने बैक टू बैक आप सभी की पसंद के लगे हुए रहते हैं। पहले मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछ लेती हूँ कि ये डायलॉग किस फिल्म का है कि कभी कभी गलत ट्रेन आपको सही मंजिल तक पहुंचा देती है, ये किस फिल्म का डायलॉग है? जल्दी से लिख भेजिए हमें। हमारा नंबर आपको पता ही है 8657661071। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले उन सभी श्रोताओं के नाम ज़रूर लेना चाहूँगी जो हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं और बेसब्री से अपनी पसंद के गाने सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। वैदही जी हमारे साथ जुड़ी हैं, चेतन कुमार जी, अरुणा खर जी, पंकज मुहिर जी, प्रमोद जी, दीपा पालकर जी, और साथ हैं फिरोज़ जी, इब्राहिम जी, संदीप जी, महेश जी, अभिजीत जी, शुभलक्ष्मी जी, मिंटू जी, पिंकी जी और आरती अरोड़ा जी। साथ ही राकेश माथुर जी हैं, वसुधा जी हैं, अजय साकरे जी इंदौर से हैं, विजेंद्र गहलोत जी अकोला से हैं, साथ ही राविन जी हैं, सुयोग जी हैं, प्रदीप जी हैं, अमित जी, अशोक जी, बाबा जी दादर से, और धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभदा जी जुड़ी हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं, विजय मोहबा जी, मुकेश जी और राजेंद्र परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, मीना जी भी जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत

स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये हिट एंड हॉट का बेसब्री से आप इंतज़ार करते हैं और साथ ही उन पजल्स का भी जो हम कुछ ही मिनटों में आपसे पूछ लेते हैं, आपके जवाब भी आ चुके हैं अब तक स्क्रीन पे। तो क्या कहूँगी, इस गाने के उस पार ज़रूर आपके सही जवाबों पर किसको मिलता है प्रथम पुरस्कार बिल्कुल बताऊँगी इसके बाद। तो सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा नगमा बरसात फिल्म से।

फिरोज जी की पसंद का ये गाना आप इस वक्त सुन रहे थे एफएम रेनबो पर 107.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजे नमिता और प्रोग्राम चल रहा है हिट एंड हॉट। अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं राकेश माथुर जी की पसंद का है, और वो इसलिए कि उन्होंने तुरंत ही हमें अपना जो है ना सवाल का जवाब दे दिया था। सवाल ये था कि कभी कभी गलत ट्रेन आपको सही मंजिल तक पहुंचा देती है, ये डायलॉग कौन सी मूवी का है। तो सही जवाब है द लंच बॉक्स, और बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है। पंकज जी ने, मुकेश जी ने, मेहर अरोरा जी ने, और साथ ही शुभलक्ष्मी जी ने हमें सही जवाब दिया है, अजय जी ने, दिग्दर्शन कविता जी ने, कई सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया है। लेकिन सबसे पहले जो है हमें सही जवाब राकेश माथुर जी से प्राप्त हुआ। और अब इसी पजल की दुनिया में एक सवाल और दाग रही हूँ कि टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का, कौन सी मूवी का है, जल्दी से लिख भेजिए। और ये वाला नगमा जो अगला मैं आपको सुना रही हूँ, ये पसंद किया है सुनील गायकवाड़ जी ने। तो आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ में ये नगमा।

ऑफ कोर्स म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ आरजे नमिता, आपका अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर हिट एंड हॉट, जिसमें आप हमें अपने पसंद के गाने लिखकर भेजते हैं। हमारा नंबर है 8657661071। और इस वक्त पेश है राकेश माथुर जी की पसंद का ये नगमा, और एक के बाद एक जो है मैं बहुत ही खूबसूरत से नगमे आपकी पसंद के लेकर आ रही हूँ। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ।

तो दोस्तों, हमने आपसे पूछा था एक सवाल हिट एंड हॉट में, और सवाल ये था कि ये डायलॉग आपको सुनकर बताना था कि किस फिल्म का डायलॉग है, कि टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। जी हाँ, ये जो डायलॉग है वो है

ना भाई MBBS फिल्म से, और सही जवाब जल्दी से जल्दी देने वाले हमारे श्रोताओं में पहला नंबर जो है अजय साकरे जी का है इंदौर से, और बहुत सारे हमारे और भी लिसनर्स हैं, प्रणव शिंदे जी, शुभ लक्ष्मी जी, हर्षदा जी, प्रमोद जी, इन सभी ने हमें सही जवाब दिए हैं, पंकज जी ने भी सही जवाब दिया, संदीप जी और अभिजीत जी, लेकिन बस थोड़ी ही देर हो गई, यानी कि सबसे पहले जो सही जवाब देते हैं हम उनके लिए क्लैपिंग ज़रूर करते हैं। कहते हैं कि नंबर वन आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नंबर टू आने वाले को लोग याद नहीं रखते, लेकिन ठीक है, हमारे श्रोताओं की कोई भी गणना नहीं है, उनकी कोई भी गिनती नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, बिल्कुल हम सभी की फरमाइशों पर काम करते हैं और उनकी फरमाइशें ज़रूर सुनाने की कोशिश करते हैं। ये अगला नगमा जो है ये आ रहा है तिरछी टोपी वाले, ये गाना पसंद किया चेतन कुमार जी ने, और इनके पसंद का गाना आ रहा है इस वक्त FM रेनबो पर।

लीजिए, अब पेश है विजेंद्र जी अकोला से हमें लिखते हैं और उनकी पसंद का ये गाना उदित नारायण की आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, क्योंकि अगला गाना जो है वो बहुत खास है और वो होगा पसंद होगी उसमें मीना जी और इब्राहिम जी की। जी हाँ, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। जी हाँ, कहीं ये पढ़ने में आया तो बड़ा खूबसूरत लगा, और भूल को स्वीकार कर लेना ही असल बात है कि ये क्षमा के आप अधिकारी हो जाते हैं। अगर आप अपनी गलती नहीं मानते या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या गलत हुआ है क्या गलत होता है, तो फिर आप अभी रास्ते में हैं, तो कहा जाए मंजिल पर पहुंच गए हैं अगर आप क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप सभी के साथ भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं जिनके पसंद के गाने मैं आप तक नहीं पहुंचा पाई हूं। फिलहाल जो गाना इस वक्त आपके पास आ रहा है पार्टनर फिल्म से वाजिद जी और स्नेहा पंत की आवाज़ों में, वो आप तक पहुँचा रही हूँ मीना जी और इब्राहिम जी की पसंद पर। और मेरे जाने का वक्त हो गया, आपसे विदा भी लेती हूँ इसी गाने के साथ। इस गाने के उस पर आप सुनेंगे समाचार, बने रहिए FM।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत

0: प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल

0: राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: हो अगदी

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही, रिलैक्स एंड चिल। और आप सही सुन रहे हैं, लव यू जिंदगी इज द प्रोग्राम। और आप लोगों के साथ इस वक्त मैं हूँ, मेरा नाम है वसीम। मैं आ चुका हूँ ये प्रोग्राम लेकर, आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ बिल्कुल 8 बजे तक। और उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे। तो न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। आप लोग बने रहिए लव यू जिंदगी पर, बहुत ही खूबसूरत से गाने आपका कर रहे हैं इंतज़ार। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं और ये गाने सुनवाते हैं जो है म्यूजिकली आवाज दिल से दिल तक।
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं 5:12:52 हो चुके हैं। सौदेबाजी, ये दोनों ट्रैक आप लोगों ने सुना, एक मैरी कॉम से और उसके बाद आक्रोश। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इन गानों को एंजॉय किया। आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं मुझे, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। और ये है विजेंद्र, दीपा पालकर, शुभदा, प्रणव शिंदे, संजय दर्शन, पंकज, आप सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो लव ज़िंदगी पर आप लोग जुड़े हुए हैं। वेल, ये सौदेबाजी के जो बातें कही गई हैं, शाद कामिल साहब ने लिखी, वैसी एक है ना, बहुत अच्छा गाना लिखा गया है जो बर्फी फिल्म का है, और वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग डिसाइड करेगा कि आखिर वो जो सौदेबाजी है, आजा दिल की करे सौदेबाजी, या फिर आधी आधी बांट ले आधा आजा दिल की ये जमी, कौन सा वर्जन आपको बेटर लगता है। ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द सॉन्ग्स, आप मुझे भेज सकते हैं 8657661071 पर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए आप, और हम आपको सुनाते हैं फिलहाल एक गाना, फिर एक कमर्शियल ब्रेक लेने के बाद हम लौटेंगे फिर से लव यू जिंदगी पर, और आप लोगों को सुनाते रहेंगे ये खूबसूरत गाने इस शाम। स्टे ट्यून्ड।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स। ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और इस वक्त मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा था, मैंने कहा था ना कि ये जो स्वानंद किरकिरे ने लिखा है और एक इरशाद कामिल साहब ने लिखा है, अभी दबे दबे पाँव से आए हौले हौले ज़िंदगी, वहीं पे मुझे साथिया फिल्म का एक गाना याद आ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, राइट फ्रॉम मीना जी, वैदेही, प्रकाश तुम और प्रणव तुम, साथिया दीपा पालकर जी हैं, अजय है, अजय सागर, विजेंद्र, आपका भी रघुनाथ शुक्रिया, और जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त जुड़ गए हैं एक के बाद, हसमुख माटुंगा से थैंक यू सो मच इतने कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, शुभदा जी, आप सब लोग बहुत शुक्रिया जो इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कोशिश यही रही हमारी ये आपको बस एंटरटेन करते रहें, और ये वीकेंड वाइब्स जो हमारे साथ शुरू हो चुकी है, ये शुक्रवार की ये शाम जो बहुत ही खूबसूरत सी हो आप लोगों के साथ, ये गानों के साथ। तो मुझे वो गाना जो है ना, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले ज़िंदगी, जैसे मुझे इसके पहले एक गाने में क्यों मिला था, है ना, कि सौदेबाजी को लेकर के। उसके बाद मुझे लगता है कि साथिया फिल्म में जो गुलजार साहब ने लिखा है ना, शाम को यू नो खिड़की से नंगे पाँव चांद आएगा, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ख्याल आते रहते। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या आप सुनना चाहते हैं वो गाना, और शाम का वक्त हो, और जो अगला गाना है इसके बाद का, हमदम के बाद, वो पीलू ट्रैक है, पीलू जो ट्रैक है उसमें अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं, और ये खूबसूरत बारिश का जो मौसम, ऑफकोर्स रहमत वाली बारिश, जहमत वाली नहीं, तो उस मौसम का इंतज़ार जिसको सबसे था, कब से था, और हमें अगर चाय कॉफ़ी पीने का ये वक्त जो मिला है, इसको बिल्कुल हम उस तरह से जीना चाहिए खुल करके, बस ज़िंदगी यही है जो थम गई है, ये लम्हा यहीं ठहर जाए। तो वो पीलू जो ट्रैक है ना, उसमें कुछ ऐसे लाइन्स हैं, ऐसा लगता है कि वो उस चाय या कॉफ़ी के लिए ही है। इंतज़ार करिए, मैं सुनाता हूँ ये दोनों गाने आप लोगों को, और फिर लौट कर आते हैं। दो तीन इनफैक्ट गाने हैं, सुनिएगा ज़रूर, और स्टेडियो मेरे साथ, ये लव यू ज़िंदगी, ज़िंदगी को बेहतरीन बनाते हैं आप और हम, FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

एक बार फिर से स्वागत है आपका 5:40:45। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो सिलसिले से चल रहा है, आप लोगों का मैसेज जो आ रहे हैं आप लोगों के, इनफैक्ट वो सब बता रहे हैं कि आप लोग किस दिल से सुन रहे हैं। बहुत उत्साहित होकर, खुश होकर, अच्छा लग रहा है आप लोगों का फीडबैक जानकर, और सभी लोगों का फीडबैक बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। और चलिए, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये क्यों कहा जाता है अक्सर आप मुझे बताएंगे कि हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो ये आप पढ़ते होंगे कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, वो दूर क्यों है, है ना, वो भी एक वजह है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वैसे चलिए, अब ये लाइन जो कार या बाइक की बात करें, पैसेंजर की तरफ लगे शीशे पर सुरक्षा के लिए लिखी चेतावनी होती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शीशे बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, है ना। इस घुमाव को, इसकी वजह से इनफैक्ट आपको सड़क का ज़्यादा हिस्सा दिखाई देता है, अब ब्रॉडर व्यू बहुत दूर तक का, हालांकि इस घुमाव में इमेज छोटी हो जाती है, है ना, लेकिन होती नज़दीक है लगती दूर है। ये एक चीज़ बड़ी ट्रिकी है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप गाड़ी चलाएं जिसे कार असलियत में छोटी और ज़्यादा दूर दिखाई देती हैं लेकिन होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़दीक, इसलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, बारिश है, बाइक्स वाले खासकर स्किड हो जाती है टायर, आप ब्रेक उस वक्त मार रहे हैं थोड़ी दूर जाकर लगती है, ऑफकोर्स आपने टायर अच्छे नहीं लगाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन जनरल व्यू मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यू नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करें, और अगर क्रॉसिंग भी करना है तो ये ऐसा हाथ दिखाते हैं क्रॉस कर लेते हैं, ऐसा ना हो, थोड़ा सब्र करें, और आने जाने का जो एक वक्त है, कीप डिस्टेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, चाहे फिर रिलेशन क्यों ना हो। खैर, ये तो आपका नज़रिया है, लेकिन बात करें अगर सफ़र की, तो अगर ये गाने हैं साथ हो किसी अपने का, एक लंबा सा सफ़र, चाय, गाने, बातें, तन्हाई, वाह क्या खूबसूरत मंज़र होगा शाम का, वो वक्त ढलती हुई शाम, इमेजिन करिए, सुनिए ये गाने, लव यू जिंदगी पर, दिल से दिल तक।

बिल्कुल म्यूजिकली यॉर्स, और 5:54 और 40-41 सेकेंड्स हो चुके हैं। आप लोग हैं वसीम के साथ इस वक्त। बिल्कुल ज़िंदगी की अहमियत, ज़िंदगी की बातें अगर मैं कहूँ तो, एक इंसान एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और उसने वेटर से बुलाया, वेटर को, तो वेटर ने उससे पूछा सर क्या लाऊँ। मैंने शायद शेयर किया आप लोगों के साथ, आप फिर भी मुझे रिमाइंड करा सकते हैं 8657-6601071 पर। जो लोग नहीं सुने वो सुने कि एक इंसान रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो वेटर ने उससे पूछा सर क्या लाऊं, तब उस आदमी ने कहा कि एक प्लेट गुजरा हुआ वक्त ले आओ अगर ला सकते हो। तो उसने कहा कि सर गुजरा हुआ वक्त तो ख़त्म हो चुका है लेकिन पछतावा अब भी तरोताज़ा है, कहो तो ले आओ। जिंदगी, समझ रहे हो ना उसकी अहमियत। लव यू जिंदगी, दिल से बोलो उसे और सुनो ये खूबसूरत गाने दिल से दिल तक। न्यूज अपडेट और उसके बाद अंदाजे में, स्टे ट्यून्ड।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7 तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
2: शाम के 6:16 और 3-4 सेकंड हो चुके हैं। आदाब अर्ज़ है, आप सभी लोगों का स्वागत है, खैर मकदम करता हूँ मैं इस प्रोग्राम जिसका नाम है अंदाज़े बयां में। और जिसने दी है ज़िंदगी उसका साया भी नज़र नहीं आता, यूँ तो भर जाती है झोलियाँ मगर देने वाला नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही कहा काजल जी आपने, ठीक उसी तरह जिस तरह से एहसास नज़र नहीं आता, दर्द नज़र नहीं आता, प्यार होता है पर नज़र नहीं आता, ये एहसास, ये कैफियत, ये नज़र नहीं आती, इसे महसूस किया जाता है। चलिए लेकर चलता हूँ एक खूबसूरत सफ़र पे आप लोगों को अंदाज़े बयां में, दिल से दिल तक।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: 6:31 और 34-35 सेकेंड्स हो चुके हैं। अंदाज़े बयां चल रहा है और आप लोगों के मैसेजेस के सिलसिले और कॉल्स के सिलसिले बिल्कुल यहां पर जारी हैं, और ये आधा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, राइट फ्रॉम लव ज़िंदगी से लेकर अंदाज़े बयां का आधा हिस्सा भी गुजर गया, और हम बातें ही कर रहे हैं, गाने ही सुन रहे हैं, ये गज़लें फ़िल्मी नगमे जो सुन रहे हैं आप और हम। उम्मीद है कि आप लोग इसे इंजॉय कर रहे हैं, इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। एक ख़याल आया था तो यूं ही लिख दिया, ये सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दें। ये ख़ास उन लोगों की तवज्जो चाहता हूं मैं कि जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त की अहमियत को, वक्त की कीमत को नहीं समझते, वक्त गुजर जाने के बाद होश में आते हैं और जिस वक्त रहना चाहिए उस वक्त होश गंवाते हैं। तो ये ख़्याल ऐसे ही आया कि वक्त ज़ाया करना है तो हमसे सीखो। ये तंज है, एक्चुअली ये तंज़िया शायरी है कि वक्त ज़ाया करना है तो हमसे सीखो, हमने कुछ नहीं सीखा वक्त ज़ाया करके। मतलब सुनाने वाला भी नहीं जानता, समझने वाले ने तो उसे वैसा ही किया जिस तरह से शायर ने लिखा है, मतलब ख्याल लिखा है। तो चलिए, आप अपना नज़रिया शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। फ़िलहाल हम आप लोगों को लेकर चलते हैं कुछ और खूबसूरत गज़लों की तरफ, यहीं अंदाज़ बयां पे, दिल से दिल तक।
7: आईना देख के बोले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ। प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
1: जी हाँ बिल्कुल, 107.1 एफएम रेनबो और ये प्रोग्राम अंदाज़े बयां, और साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ इस प्रोग्राम में। कितनी तेज़ी से ये वक्त निकल रहा है। अंकित, विजेंद्र, श्याम सुंदर, प्रणव शिंदे, संजय दर्शन, काजल काकर चेंबूर से, प्रमोद, पंकज और किरण नायक, आप मीना जी, थैंक यू सो मच, दिस इज 535, दीपा पालकर वैदिक, थैंक यू फिरोज़, आप सभी लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त। और ये प्रोग्राम में बस कुछ और फिल्में गज़लें जो बाकी हैं मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, लेकिन एक ख्याल ये भी है कि कई सारे लोग मुझे मैसेजेस में शायरियाँ भेज रहे हैं, मैं भी कुछ सुना देता हूँ आप लोगों को कि हज़ारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती। आप कितना भी अच्छा कर ले ज़िंदगी में, अमूमन ऐसा होता है, लेकिन हम कोई काम जो अगर करें वो इस उम्मीद से ना करें कि हमें उसके बदले में कोई फेरबदल हो या कुछ अवार्ड रिवॉर्ड समथिंग मिले। वो काम को करना ही हमारी फितरत होनी चाहिए, वो आदत होनी चाहिए, उसके आगे का जो अंजाम हो सो हो। ये काम वो नौकरी नहीं है हम जिसके बदले में कुछ हमें मिले, ये एक अनकंडीशनल चीज़ है, बेलॉस आप अगर कहें उसे। हज़ारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, मगर एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है। क्या आप लोग इस बात से इत्तफाक रखते हैं? बताइए अपना नज़रिया, ये भेजिए, इससे ही मिलता जुलता कुछ शेर अगर आपके पास है मैं ज़रूर वो शेर पढ़ूंगा। बने रहिए मेरे साथ 8657661071, व्हाट्सएप करिए और सुनिए ये खूबसूरत, थोड़ी संजीदा है लेकिन मीनिंगफुल है, मायने बहुत अच्छे हैं। बने रहिए दिल से दिल तक।

तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलक के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान,

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे लूटने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7 to 8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स.
2: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और न्यूज़ ऑन AIR ऐप मोबाइल ऐप 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल. ये प्रोग्राम है हम तुम और आप लोगों के रिक्वेस्ट आर बिल्कुल. अब ऑलरेडी मैं देख रहा था 6:30 बजे से आप लोग रिक्वेस्ट भेज रहे थे और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अंदाज़े बयां में आप लोगों को शेर शायरी कर रहा हूँ. नहीं नहीं, ऐसी मजाक की बात है, लेकिन आप सभी लोग जुड़े हुए थे और मैसेजेस आ रहे थे शेर शायरी. उस हिस्से को आप लोगों ने खोल कर दिया, मुझे यकीन है. और अब ये जो पल है ये आप लोगों के गाने जो आप लोग सुनना चाहते हैं. तो चलिए सत्या फिल्म बताइए, आज कितने साल हो गए हैं सत्या फिल्म को. आप मुझे 8657661071 पर कमाल की फिल्म, कमाल का परफॉर्मेंस, एक ट्रेंड सेटर, एक अलग अंदाज. आज भी देखो तो वो फिल्म बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी के ज़माने की, मतलब इतना आगे निकल आए हैं फिल्म मेकिंग में, इतनी स्टोरी टेलिंग में, इतना नया नया अंदाज. और लेकिन ये फिल्म आज भी जब देखते हैं तो उसका एक अलग ही लुत्फ है, अलग ही मज़ा है, एक अलग ही अंदाज है. उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है बहुत कमाल, और परफॉर्मेंसेस क्या क्या बात करें, एक से बढ़कर एक. चलिए फिलहाल सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने. यहाँ पे फिल्मों का जिक्र होता रहेगा वरना गाने यहीं रह जाएंगे. स्टेडियम मेरे साथ हम तुम पर दिल से

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 7:31 हो चुके हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है हम तुम, और जितने लोगों की रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं प्ले कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आप लोगों की मैसेजेस इस तरह से आ रहे हैं, मीना जी वल वताल फिल्म का ट्रैक आप लोगों ने सुना, फिरोज़ आपकी भी रिक्वेस्ट हम ज़रूर प्ले कर रहे हैं, एंड थैंक यू संजय वेलकम, आपने भी हमें जो कैसी है ये रुत के लिए जिक्र किया। 91 से आप सुन रहे हैं, आपने कहा कमाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। वर्सटाइल सिंगर और एक्टर प्रोड्यूसर, क्या कहें अमित कुमार साहब के बारे में, लेजेंडरी किशोर कुमार साहब के साहबजादे अमित कुमार, और उन्होंने भी अपना एक अलग पहचान बनाई है, वो अंदाज़ बिल्कुल बरकरार रखने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो झलक दिखाई देती है उनके उस अंदाज में, और वो हमेशा से हमें किशोरदा के बहुत ज़्यादा करीब लेकर जाता है उनका एक अलग अंदाज। प्रकाश थैंक यू सो मच, और आप बने रहिए सब लोग हमारे साथ, और शुभदा जी आपका भी शुक्रिया, दीपा पालकर जी थैंक यू सो मच। मैं वो गानों की तरफ आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ जिसका जिक्र आप लोगों ने किया था और इंतज़ार भी। चलिए सुनते हैं हम तुम पर ये गाने।

एक पल के लिए मुझे ये ख्याल आया कि मैं शायद ये प्ले कर दूं कि सागर किनारे वहीं पे है ना, कि आप अमित कुमार साहब को भी सुन ले और किशोर कुमार को भी सुन ले, लेकिन मैंने कहा कि दिस इज डेडिकेटेड टू अमित कुमार, तो उन्हीं के गाने सुनते हैं आप और हम, और अपनी भलाई चुपचाप करते रहो, जिन दिलों तक उसको पहुंचना है सच में उनके लिए जो मायने रखते हैं वो बिना किसी घोषणा के बिना किसी डिक्लेरेशन के पहुंच जाएंगे और लोग उसे महसूस कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा ना कि प्यार होता है बट दिखता नहीं, उसे महसूस किया जाता है, ये एक एहसास है। गुलजार साहब ने लिखा था कि सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और गाने सुनाता हूँ। अनीश आ चुके हैं स्टूडियो में, हाय अनीश, और वो रहने वाले हैं आप लोगों के साथ बिल्कुल 8 बजे से। मैं आप लोगों को अब ये गानों का सिलसिला आप लोगों के रिक्वेस्ट के साथ छोड़े जा रहा हूँ। मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, टिल देन टेक केयर, सुनते रहो FM रेनबो, दिल से दिल तक।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: इंडिया पोजीशन ऑन द इंडस वॉटर

0: वाटर्स ट्रीटी।
1: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
2: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
0: India's development assistance।
1: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
2: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर

0: विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3

0: दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी निलंबित है, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगा है। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण 2000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

शुरुआत का तो देखिए बताने पर अंत होने को है, क्योंकि अब बजने को है 12 यानी वो समय जब मैं आपसे लूंगी विदा। गानों का सिलसिला एफएम रेनबो पर जारी रहेगा, पर हमसे आपके अब मुलाकात होगी अगले शुक्रवार इसी चैनल इसी प्रोग्राम में फिर होगी बात। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की हर पल बदलती धुनों को। प्रज्ञा तिवारी की तरफ से बाय।

12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण 2,000 लोगों की अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। ये थे आज के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 12:02 और 31 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आवर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म के इस गीत के साथ, आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम की हैं।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: लव ब्रेकअप्स जिंदगी, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे, आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं जीरो आर शो, मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म करीब से, आवाज़ें कुमार सानू और संजीवनी की।

एक बजने को है, आइए अब सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और

लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना अब बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। इस्पात मंत्रालय 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। ये थे आज के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 1:02 हुए हैं। एफएम रेनबो पर आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुहानी रात। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फूल और कांटे फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: आय हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

दो बजे हैं, आइए अब सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। इस्पात मंत्रालय 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। और विंबलडन

टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। ये थे मुख्य समाचार।

0: मराठी वाणी आकाशवाणी
1: 2:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने, इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल है। 3 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस्पात मंत्रालय 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। और फीफा विश्व कप में अमेरिका में हुए एक रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई है। इसी के साथ अब तक के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप।

0: और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।